मा जाम साथी धुमधाम राइड सपन नयाँ इभी मेरो दिया इभीसँग लाइफ छ सुपर फन. Elders love it, so do the young. It's safe.

दाम साथी धुमधाम राइट सपन नया इबी मेरो टियागो इबी सँग लाइफ छ सुपर फन एल्डर्स लव इट सो डू द यंग इट्स सेफ

प्रोप्राइटर रविन्द्र खत्री, सम्पर्क नम्बर 029560580, 98520160580 र 98421-08181। धृति स्टोर निर्माण होम डेकोर एन्ड सप्लायर, खादबारी 1, सम्खुवा सभा।